नमस्कार, 4EB FM 98.1 के साप्ताहिक भारतीय प्रसारण नमस्ते वर्ल्ड में आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत करती हूं। मैं आपकी आरजे सीमा श्री कुमार। आशा है आप सभी कुशल मंगल होंगे। ठंड रही है और आए दिन लगातार बारिश भी हो रही है। ऐसे मौसम में अपना और परिवारजनों का भरपूर ख्याल रखिए। चलिए आज का कार्यक्रम शुरू करते हैं इस राम भक्ति गीत से, जिसे गाया है सोनू निगम और जया किशोरी।

0: Just moved from overseas? Start banking like a local with ANZ. We're one of Australia's biggest banks and we're chosen by millions. For customers living in Australia, available in English only. Consider if right for you. Eligibility criteria and TNCs apply.
1: Station sponsor.
2: आज के सुविचार में चलिए एक कहानी सुनिए। पुराने समय में एक राज्य में एक शक्तिशाली राजा हुआ करता था। उसके पास धन दौलत, विशाल राजमहल, सेवक, सुख सुविधाएं और आज्ञाकारी प्रजा सब कुछ था। परिवार भी सुखी था और राज्य में किसी प्रकार की कमी नहीं थी। बाहर से देखो तो सब कुछ सुखी और खुश नजर आता था। परंतु राजा का मन हमेशा अशांत रहता था। रात में अच्छी नींद नहीं आती थी और छोटी छोटी बातों पर वह गुस्सा करते थे। मन की बेचैनी ने उसकी खुशियां छीन ली थी। उस राज्य में एक संत थे जिनके पास सभी अपनी समस्याओं को लेकर जाया करते थे। राजा उस संत के आश्रम में पहुंचता है और संत से कहता है, गुरुदेव, मेरे पास सब कुछ होते हुए भी मन में शांति नहीं है, कृपया मेरे मन की शांति का कोई उपाय बताइए। तब संत तुरंत उठे और आश्रम के बाहर चले गए। राजा भी उनके पीछे पीछे चला गया। बाहर जाकर संत ने सूखी लकड़ियां बटोरी और आश्रम लौट आए। फिर उन्हें जलाने लगे। आग में धीरे धीरे एक एक लकड़ी डालकर जलाने लगे। धीरे धीरे आग तेज होती चली गई। राजा यह सब ध्यान से देख रहा था, पर उसकी समझ में कुछ नहीं आया। आप सब भी इसके बारे में सोचिए और देखिए कि आपको क्या समझ में आया। इस कहानी को आगे बढ़ाएंगे इस गीत के बाद।

जिन श्रोताओं ने देर से ट्यून इन किया है उन सभी का हार्दिक स्वागत है आज के साप्ताहिक भारतीय प्रसारण नमस्ते वर्ल्ड में 4EB FM 98.1 के आज के प्रसारण में मैं हूं आपके साथ आपकी आरजे सीमा श्री कुमार। तो मैं एक राजा की कहानी आपको बता रही थी जो पूरी तरह से वैभव संपन्न होने के बावजूद मन की शांति की खोज में एक संत के आश्रम पहुंचता है जहां संत उसके सामने आग जलाकर एक एक सूखी लकड़ी डालकर आग को तेज करते हैं। क्या आपको समझ आया संत क्या बताना चाहते थे? वे राजा को बताते हैं हर व्यक्ति के भीतर एक आग होती है, यदि उसमें प्रेम दया और सेवा की आहुति डाली जाए तो मन शांत और प्रसन्न रहता है, लेकिन जो लोग उस आग में क्रोध लालच मोह और अहंकार की लकड़ियां जलाते हैं उनके भीतर अशांति बढ़ती जाती है। मन की शांति पाने के लिए बुरी आदतों का त्याग करना जरूरी है। जब इंसान निस्वार्थ भाव से प्रेम करना सीख सकता है तभी उसे सच्ची शांति मिलती है। क्रोध इंसान के सोचने समझने की शक्ति को कमजोर कर देता है। जब भी गुस्सा आए तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय कुछ समय शांत रहने की आदत डालें। गहरी सांस लें, पॉजिटिव सोचें, जरूरत और लालच में अंतर समझें। जी हाँ, वांट और नीड का अंतर। जरूरतें सीमित होती हैं लेकिन लालच का कोई अंत नहीं होता। अपनी संगति को प्रेरणादायक और सकारात्मक लोगों के बीच बनाएं। निस्वार्थ भाव से दूसरों की मदद करें। ध्यान प्रार्थना और योग जैसी गतिविधियां मन को शांत रखती हैं। जो बीत गया उन बातों पर विचार करना अपना समय बर्बाद न करें। आज पर काम करें और आज पर भरोसा रखें। चलिए सुनते हैं यह गीत फिल्म नसीब से जिसे गाया है सुमन कल्याणपुर अनवर हुसैन और कमलेश अवस्थी ने।

0: Looking for a day that celebrates culture, community, and connection? Join Bahatia Samaj at the Queensland Multicultural Community event happening on Sunday, 2nd of August from 10 a.m. to 4 p.m. at Brisbane City Hall, King George Square. Enjoy the live cultural performances, a multicultural awards ceremony, family-friendly kids activities, international food stores, workshops, and information booths from government and community organizations. It's a day dedicated to empowering people and strengthening Queensland through knowledge, diversity, and inclusion. Guess what? It's free for everyone. For nominations and event details, visit Bahatia Samaj online. Unity in diversity.
1: आज के इस कार्यक्रम में मैं आपकी मुलाकात कराऊंगी हिंदी सिनेमा के कुछ ऐसे सिंगर्स से जिनके बारे में शायद आप में से कम ही लोग जानते होंगे। इन कलाकारों ने कई सुपरहिट गाने गाए हैं जिन्हें शायद आपने कई बार सुने होंगे, परंतु उनके पीछे की आवाजों के बारे में शायद आपको जानकारी नहीं होगी। इससे पहले जो आपने गीत सुने उसकी फीमेल सिंगर थी सुमन कल्याणपुर। वे ऐसे समय हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में आई जब हमारी गायक कोकिला लता मंगेशकर का बोलबाला था, और फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली कहें तो सुमन कल्याणपुर की आवाज काफी हद तक लता जी की आवाज से मिलती जुलती सुरीली आवाज थी। कई गीतों को आज भी हम लता जी का गाया मानते हैं जबकि वे सुमन जी के गाए गीत हैं। लता जी की लोकप्रियता के नीचे सुमन जी का करियर ज्यादा फल फूल नहीं सका। वे जल्द ही इंडस्ट्री से दूर होती चली गईं। आगे बात करते हैं पिछले कुछ दशकों की एक सुरीली आवाज के विषय में, और इनका नाम है चिन्मयी श्रीपदा। इनका नाम साउथ की फिल्मों में काफी जाना पहचाना है। उसकी तुलना में हिंदी फिल्मों में चिन्मयी के कम गाने हैं परंतु काफी लोकप्रिय गाने हैं। चिन्मयी ने कई फिल्मों में वॉइस डबिंग भी की है। वे एक एंटरप्रेन्योर भी है, अपने खुद के बिजनेसेस हैं। महाराष्ट्र में जन्मी चिन्मया ने 3-4 साल की उम्र से ही कर्नाटक संगीत गायकी सीखनी शुरू की थी, फिर बाद में हिंदुस्तानी संगीत की ओर रुख किया। चिन्मयी एक रेडियो जॉकी भी रह चुकी हैं। चलिए अब गुरु फिल्म का यह गीत सुनते हैं जिसे चिन्मयी ने अपनी मादक आवाज दी है, और संगीत है ए आर रहमान जी का। यह काफी पॉपुलर गीत है।

चलिए अब बात करते हैं जसविंदर नरूला जी की। पंजाबी फिल्मों की एक जानी मानी गायिका हैं जसविंदर जी, और 1999 में हिंदी फिल्मों में गाकर धूम मचा दी। पहले उन्होंने भजन और सूफी गायकी से शुरुआत की। जसविंदर जी की आवाज फोक और भक्ति गीतों में बहुत निखर कर सामने आती है। जिन हिंदी गानों को उन्होंने अपनी आवाज दी है वे काफी हिट हुए हैं। जब वे गाती हैं तो अच्छे अच्छे गायकों की हवा टाइट हो जाती है। लोग सोचने लगते हैं कि उनको अब कोई नहीं पूछेगा, क्योंकि पावरफुल वॉइस वाली जसविंदर जी जो आ गई हैं। प्यार तो होना ही था वाले गीत के लिए उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला है। फिर 2025 में उन्हें पद्मश्री भी मिला। चलिए उनका गाया यह प्यारा सा गीत सुनते हैं, फिल्म मिशन कश्मीर का यह फेमस सॉन्ग। इस गीत को गाया है जसविंदर नरूला, सुनिधि चौहान और शंकर महादेवन ने।

0: ये संदेश ब्रेस्ट स्क्रीन क्वींसलैंड की ओर से है। स्तन जांच हर दो वर्ष में कराने की सलाह दी जाती है और ये 50 से 74 वर्ष की आयु की महिलाओं के लिए सबसे अधिक प्रभावी मानी जाती है। नियमित स्तन जांच आपका जीवन बचा सकती है क्योंकि इससे स्तन कैंसर की शुरुआती लक्षणों का समय पर पता चल सकता है। हम 40 वर्ष की महिलाओं तथा 75 वर्ष या उससे अधिक आयु की महिलाओं के लिए भी मुफ्त जाँच उपलब्ध कराते हैं। आपको डॉक्टर की रेफरल की आवश्यकता नहीं है और आवश्यकता होने पर अनुवादक की व्यवस्था भी की जा सकती है। अपॉइंटमेंट के लिए 1320 पर कॉल करें या breastscreen.qld.gov.au पर बुक करें। क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन द्वारा अधिष्ठान प्रायोजक।
1: आप सुन रहे हैं 4EB FM 98.1 पर साप्ताहिक भारतीय प्रसारण नमस्ते वर्ल्ड, आपकी आरजे सीमा श्री कुमार के साथ। हमारे क्वींसलैंड राज्य में बारिश आए दिन होती रहती है, इस सर्दी के मौसम में भी। बारिश के मौसम में दो चीजों का होना बहुत जरूरी है, एक मन में किसी की याद, रोमांटिक यादें, शायरी, मोहब्बत के गीत, और दूसरा है गर्म चाय और तीखे पकौड़े। अब आप यह मत कहिए कि बारिश के समय को इन दो चीजों से कभी जोड़ा ही नहीं जा सकता। ऐसा कौन सा दिल है जिसने कभी प्यार मोहब्बत को नहीं जाना हो? प्रेम पर ही तो दुनिया टिकी है। मनुष्य के हृदय का सबसे महत्वपूर्ण और जीवंत अनुभव है प्यार, और बारिश में वह भर भर कर उमड़ता है। हाथ में एक प्याली गर्म चाय की हो और टेस्ट बड्स को पकौड़ों का प्यार मिल रहा हो तो बारिश का मजा दुगना हो जाता है। चलिए इसी बारिश की एक रोमांटिक मलयालम गीत को सुनते हैं, फिल्म शिकारी शंभू से।

सिनेमा में ऐसे कई गीत हैं जिन्हें काफी बार लोग सुनते हैं। गीत काफी लोकप्रिय हो जाता है, परंतु इसके पीछे सुर देने वाले कलाकार कौन है, इसकी सबको जानकारी नहीं होती है। आए दिन इतने सारे रियलिटी शोज आते हैं, कुछ कलाकारों को बाद में काम मिलता है, कुछ को नहीं मिलता है। जिनको काम मिलता है उन्हें भी काफी स्ट्रगल करना पड़ता है निरंतर काम पाने के लिए। आए दिन कई कलाकार आते हैं फिर चले जाते हैं। इस भीड़ में अपना नाम बना पाना उतना आसान काम नहीं होता। क्या आपने 2022 की कला नामक फिल्म देखी है? उसमें कुछ नए चेहरों ने अभिनय किया था। इसी फिल्म ने तृप्ति डिमरी जैसी अभिनेत्री को हमारे सामने प्रस्तुत किया बाबिल खान के साथ। उसी तरह इस फिल्म के एक लोकप्रिय गीत को गाने वाली भी एक नई कलाकार है, सिरिशा भगवतुल्ला। उन्होंने कुछ साउथ की फिल्मों में भी गायकी की है। दिखने में काफी ग्लैमरस भी हैं, तो हो सकता है हम उन्हें फिल्मों में अभिनय करता भी देखें। चलिए सुनते हैं सिरिशा का गाया कला फिल्म का यह गीत।

80s 90s के दशक में एक आवाज जो मोहम्मद रफी की आवाज की याद दिलाता था, वह काफी उभरा था। जी हाँ, मोहम्मद अजीज जी के गीत काफी लोकप्रिय हुए थे। उन्होंने काफी भजन भी गाए हैं और सूफी गीत भी गाए हैं। अपने समय की सभी गायिकाओं के साथ ब्लॉकबस्टर ड्यूएट्स भी गाए हैं। 20,000 से भी अधिक गीत उनकी झोली में है। मर्द फिल्म का मर्द टांगे वाला गीत के साथ मोहम्मद अजीज को ख्याति मिली। सातवें सुर तक पहुंचने वाले एक अद्वितीय कलाकार थे मोहम्मद अजीज। 2018 में कार्डियक अरेस्ट के चलते उनकी मौत हो गई। चलिए राम लखन फिल्म का उनका यह फेमस गीत सुनते हैं।

0: Just moved from overseas? Start banking like a local with ANZ. We're one of Australia's biggest banks and we're chosen by millions. For customers living in Australia, available in English only. Consider if right for you. Eligibility criteria and TNCs apply.
1: Station sponsor.
2: मंगेशकर परिवार के सभी लोग गायकी और म्यूजिक में अपना नाम रखते हैं. लता जी और आशा जी काफी प्रसिद्ध थीं, तो उषा मंगेशकर भी कम प्रसिद्ध नहीं थीं. उन्होंने जय संतोषी मां नामक फिल्म के गाने गाए थे और फिल्म और गाने सुपरहिट रहे थे. यह फिल्म तब आई थी जब शोले और दीवार जैसी ब्लॉकबस्टर्स रिलीज हुई थी. उषा मंगेशकर ने डिस्को डांसर, नसीब, खट्टा मीठा, शान जैसी फिल्मों में भी गीत गाए हैं और ज्यादातर अन्य गायिकाओं के साथ को सिंगर बनकर कई गीत गाए हैं. चलिए अब सुनते हैं उषा मंगेशकर का गाया एक हेलन वाला डांस नंबर फिल्म इनकार से.
3: मैं

क्या आप जानते हैं कि म्यूजिक कंपोजर्स जतिन ललित और एक्ट्रेसेस सुलक्षणा पंडित और विजेता पंडित सिबलिंग्स हैं? 1970s-80s की खूबसूरत अदाकारा सुलक्षणा पंडित एक बहुत अच्छी गायिका भी हैं। उन्होंने अपने समय के सभी दिग्गज एक्टर्स के साथ फिल्मों में अभिनय किया है। 1967 में लता जी के साथ तकदीर फिल्म के गीत के साथ उनकी फिल्मी गायकी की शुरुआत हुई। हिंदी, बंगाली, मराठी, उड़िया, गुजराती भाषाओं में उन्होंने काफी गीत गाए हैं। कहा जाता है कि सुलक्षणा पंडित ने जब संजीव कुमार के साथ शादी का प्रस्ताव रखा तो संजीव कुमार ने उन्हें रिजेक्ट कर दिया था। तब से फिर सुलक्षणा पंडित ने कभी शादी ही नहीं की। 2025 में उनकी मौत हो गई। चलिए अब सुनते हैं किशोर कुमार और सुलक्षणा पंडित का गाया यह गीत फिल्म अपनापन से।

तो देखिए आज मैंने आपकी मुलाकात कितने कलाकारों से करवा दी। आशा है आज का यह कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा और आपने आज के नए पुराने गीतों का आनंद भी लिया होगा। आज के कार्यक्रम के कमेंट्स मुझ तक जरूर पहुंचाएं। मेरा नंबर है 0400907907। हमारे शनिवार और रविवार के कार्यक्रम के साथ यूं ही जुड़ते रहिए। आपका एनकरेजमेंट और सपोर्ट हमारे इस प्रसारण को बनाए रखने के लिए बहुत जरूरी है, इसलिए हमारे मेंबर्स या सब्सक्राइबर्स भी जरूर बनिए। 4EB के वेबसाइट पर सभी जानकारी मौजूद है। आखिर में सुनिए हमारे दोस्त जीव और उनकी पत्नी अर्चना की फरमाइश पर यह गीत फिल्म जब जब फूल खिले से। यह फरमाइश आई है सिंगापुर से। जीव और अर्चना आपको हमारा धन्यवाद। इसी गीत के साथ आज का यह कार्यक्रम समाप्त करने का समय हो चला है। सर्दी के इस मौसम में आप सब अपनी सेहत का ख्याल रखिए। एंजॉय द डे, हमेशा मुस्कुराइए, खुश रहिए। मैं आपकी आरजे सीमा श्री कुमार अब आपसे विदा लेती हूँ। सीमा नाउ साइनिंग ऑफ। नमस्कार।